ठीक है गुकिंग दे इंटर डेटा से नेट आ कोई ये या जन थानिंग था सासे ओं कोई ये या गुजा की दी इंटर डिट रे इ देना सोना नो ना के बगाए पीटर मैकेंसी हिरी दी या बेसने ठेके नहीं लगा इंटर डिट रे से अन्य इसी डिट रे सोतना होने उस अंत है बगाए केट्स इन्हें हम डेटा डिट